सत्यनाम सत्यनाम सत्यनाम जी बोल सत्यनाम हरि हरि हरि हरि हरि हरि जी बोल हरि हरि हरि हरि हरि हरि जी बोल।